सर्च। एलजी ले ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज, अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कंप्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई, नागरिकता भाई पुग्छ, हर एक घर को खुशी, घर घर में एलजी, एलजी लाइफ्स गुड।

0: सबै प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्न एकजुट हौँ। बालश्रम अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाऊ। बाल बालिकालाई श्रम होइन शिक्षा दिऊ।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 11 बजेको छ
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी